0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: GPS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुड।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। तो वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की लेके आ रही हूँ पहली फरमाइश हमारे पास आई है श्री महावीर जी से। श्री महावीर जी से हमें कॉल किया है देवेंद्र चौधरी जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: हाउसवार्मिंग पार्टी इज टुमारो
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज आस्था बंसल स्टडिंग इन 9th क्लास बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम.
1: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
0: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं मैम. मोनिका
1: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, जब भी तेरी याद आए.
1: फरमाइश पर ये गाना.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो
4: सर, नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
4: सर नाम क्या है आपका?
3: नाम मैं मंजर अली खान।
4: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: मैम गाना वो है आ बैठ मेरे पास, कुछ देख कर।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी जनाब,
1: कहाँ से बात करूँ मैम?
0: मुझे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: उडारिया।
1: उडारिया
0: जी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका?
1: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से।
0: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना है कह रही है खामोशियां।
0: हाँ मैम। ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रविंद्र मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: तेरी गली से घर छोड़ के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: हाँ, चला दो जल्दी।
1: ओके सर।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: सजाद खान, पुराने मुरादी।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चल चला चल फकीरा चल चला चल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:36 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। मैं आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक।

0: 96.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
0: रेडियो डी। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर।
3: राधे राधे
4: दीदी। राधे राधे। बहुत दिनों में याद कराया आज मेरे को, बहुत खुश रहेंगे आज तो दीदी का फोन आया कितने दिनों में।
3: दीदी मैं अभी एमपी चली गई है दीदी, तो एक महीने में लौट के आई हूँ।
4: अच्छा, जब ही मैं कह रही हूँ आजकल तो दीदी याद ही नहीं करती, भैया भूल गए।
3: अब क्या करें, मायके चले गए और ससुराल में आ गए यहाँ पे।
4: हाँ ये भी सही है भाई, दोनों तरफ भी जाना पड़ता है।
3: दोनों तरफ दीदी क्या करे, राजस्थान में ससुराल है, एमपी में मायका है हमारा।
4: एमपी में कौन सी जगह दीदी?
3: मुरैना जिला, सबलगढ़।
4: सबलगढ़। हाँ जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहोगे दीदी आज?
3: मुझे गाना सुनना है जान फिल्म का गाना है, वो गाना है आएगा वो काटा।
4: आएगा वो काटा।
3: हाँ
4: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
4: वेलकम दीदी। हेलो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुलशन।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे गुलशन जी?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: लाखों हसीन देखे कोई तो जिसा यहाँ कहाँ।
3: ओके सर, ओके मैं तुम्हारे आपको फरमाइश करिएगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: जी मैम, मेरा नाम
1: क्या है आपका?
0: तालीम खान, लोको कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सींचा चाय, टूट भी जाए दिल ना किसी का टूटे ना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: मैडम अभी
1: जब

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगा बुक सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझे दर्द दिल का पता न था।
1: ओके, आप सुना रहे हैं, फरमाइश करिए गाना। हेलो,

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: रफी खान। मस्जिद के पीछे
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर

0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग। क्या कर रखा है
1: लाइफ? सर नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम सोहेल सैफी है मैडम।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? राजीव कुलवानी से बात कर रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: यार हमारे दोस्त गाना सुनना चाहते हैं, वो बताएंगे आपको कौन सा गाना लगवाना।
3: हेलो गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर।
3: मैडम मेरा नाम है अय्यूब सलमानी।
1: हाँ जी।
3: मैं गाना सुनना चाहता हूँ आज। हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपको फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओके मैम थैंक्स।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है अमीरी गरीबी और गाने के बोल है सोनी और मोनी की जोड़ी अजीब।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी शर्मा इस परिवार में।
1: धन्यवाद,
0: वेलकम।

0: हाँ सर नमस्ते।
1: नमस्कार दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा था दीदी।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आशा फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, आशाओं के सावन में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।
2: कुछ

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: प्रिंसराज।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मऊ कला।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: धुरंधर टू मूवी का गाना।
3: धुरंधर टू मूवी का गाना?
2: हाँ।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिणाम

0: हेलो
1: जी मैम,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
2: वो खून भरी मांग का है, जीने के बहाने लाखों है जीना, तो तुझे आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, तूने अपनाया ही नहीं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपको। सुनाइए सर ये गाना बीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी ओके।

0: सर नमस्ते।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।
0: धन्यवाद सर। सर नाम क्या है आपका?
1: रूपचंद गोयल, बाड़मेर राजस्थान।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज मुझे जो गीत सुनना, पिक्चर का नाम है जान तेरे नाम, तो गीत के बोल है हम लाख छुपाए प्यार मगर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी, मेरा नाम है प्रियांश मीना।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: जी, मैं बात कर रहा हूँ मलाना डिंगर मानाली से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी सर?
1: मैं गाना सुनना चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: उमर शंकर पटेल चौटालिया सागर मध्य प्रदेश।
1: हेलो,
0: वो फिल्म मैम उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ चौटालिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सुहाग फिल्म का है, गोरे गोरे मुकड़ी से काला काला चश्मा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सोनिया वर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: किताब सॉन्ग।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपके घर में।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात करूँ?
1: गंगा प्रसिद्धि।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पिया जी मेरा सूट सिमाद है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते सलमान, क्या आपका?
1: हाँ हाँ, जम्मू से केशव शर्मा जी।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ना हीरो फिल्म का गाना, तो लोगों से सुना है, किताबों में देखा है, प्यार करने वाले कवि करते हैं।
2: तुम्हारी उनकी फरमाइश कर रहे हैं।
1: ओके मैडम, थैंक यू,
2: वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मयंक।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: चांदनी रात में घोड़ी चला गया।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: majesty, horrible
1: news. 6 Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर. गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6.
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे.
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6.

0: BS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा।
1: BS साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
2: नमस्कार
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम लतीफ अहमद रैना कश्मीर।
3: सर थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलो।
2: मैं कश्मीर से।
3: जी सर, कौन सा गाना
2: सुनना?
3: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी
2: आज? तलत मोहम्मद रफी की आवाज में सुना है।
3: तलत मोहम्मद रफी की आवाज में?
2: मोहम्मद रफी की आवाज में।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: तेरे
1: लगी
0: हाँ
1: तुम्हारे आंखें फरमाइश करिएगा ना।

0: हाँ जी, नाम क्या
1: है? सावित्री।
0: कहाँ से बात करूँ?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तारे।
0: कौन सा?
1: तारे।
0: तारे।
1: हाँ
0: ओके मैम, सुधार मत करना, इस करिएगा ना।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गाँव गुजरजा से बोल रहा हूँ मैडम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना ये है सर, तुझे देख के खन खन चमके पायल चांदी की।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी समझाई करिए गाना।
1: थैंक यू।

0: हेलो हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: छाती के लगाए रखो।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी खिदमत करूँगा।
2: देख दोस्त, डॉक्टरी लाइन के हिसाब से ये 15-20 दिन की मेहमान है, बाकी भगवान जाने। जितनी सेवा कर सकता है कर ले।

0: हेलो भाई साहब, रिपोर्ट नॉर्मल आई है। कौन सी दवाई दी है आपने?
1: डॉक्टर साहब, प्यार तो बड़ी कोई दवाई थोड़ी हो से।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है?
2: हाँ जी, ये ऑगस्ट जानवरे में मेरा 36।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: गदर से कोई भी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: जीपीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: हम बोल रहे हैं पंडा फंसी थी से।
4: ओवर पाइन है।
3: हाँ, तुमने पहले गजरा पानी ले जाए।
4: कौन सा?
3: गजरा पानी ले जाए।
4: गजगर पानी ले चली।
3: हाँ,
4: उसी नाम सुना रहे हैं, फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गोली।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाँव जाना चाहोगे? कौन सा सर?
1: दे दे दे दे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना, कॉल मत करना सर, बात

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहित,
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: नसिया कॉलोनी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: देसी गाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JE6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।
5: एक गल करनी है, मैनू ना सीरत बहुत चंगी लगती है। देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, लेटर ओदे तक पहुंचा दे। तू मेरे लिए इन्ना नहीं कर सकती, प्लीज।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों बातें करते नए तरानों के बीचों में के नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाती है गर्मियों के मौसम में। दोस्तों नवजात शिशुओं की मोटे या गर्म कपड़ों को वजह से नरम कॉटन के कपड़े पहनाए ताकि बच्चों को घमोनिया और पसीने से कम हो जाता है। शरीर में पानी की कमी न होने दे। 6 महीने के बच्चों को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। माँ का दूध ही बच्चों का पोषण और पानी दोनों ही देता है। तेज धूप से बचाए। 6 महीने के बच्चों को ज्यादा धूप में ना ले जाए। दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चों को बाहर ना ले जाए। और बाहर जाना जरूरी नहीं होता। अगर जाना हो तो हमें बच्चे के सिर पर टोपी या सूती कपड़ा ढक कर ले जाए। कमरे में ठंडा और हवादार रखे। कमरे में साफ हवा आती रहे। वे बहुत तेज एसी या कूलर सीधे ही बच्चे पर ना चलाए। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। 6 महीने के बच्चे पर नवजात शिशुओं का हमें साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के कपड़े पर बिस्तर या बोतल आदि साफ रखें ताकि वे संक्रमण रोग से बचा हो सके। गमोनियों से बचने के लिए नवजात शिशुओं को ज्यादा मोटे कपड़े पहनाने से बच्चे के गमोनिया हो जाती है। बच्चों को ज्यादा देर तक गीले कपड़े में ना रखें। जरूरत पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह या बेबी पाउडर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। बच्चों को माँ का पौष्टिक भोजन, माँ का अच्छा खाना बच्चे को सेहत पर ही असर डालता है। ज्यादा पानी या फल हल्का भोजन लेना चाहिए। सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: मेरी जिंदगी का जिन्ना समा देना विद्या बहुत असल विद्या मेरा फ्यूचर मेरे फैमिली दे हाथ विच है ते उन्हां दी खुशी मैनू कैनेडा भेजन च है। अपना ख्याल रखी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यार सुख भाई ये करी की जांदा इहदा तां रोज दा ही काम आ।
2: ओ भरा वा ए पता नहीं हुण किनू मनाउण नूं फिरदा है।
3: भाई जे मन गई ना आयत की दा पक्का।
2: मेरे वीर मैनूं पता तू किहड़ा विआह कराउणा गा। विआह तक तां तेरी गल ही नहीं पहुंचदी।
4: ओए ओए भाभी आ गई ओए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पल। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने। थोड़ी देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद करना चाहिए गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंदना चाहिए गाना।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद करना चाहिए गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

ओडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

दोस्तों भक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे गंगापुर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे, 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गुड इवनिंग दोस्तों, तो वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कनेक्ट 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
4: हेलो
5: हेलो मैम। हेलो।
4: हाँ सर नमस्ते।
5: हेलो फरमाइश सर। नमस्कार
4: सर। नमस्ते सर। नाम क्या है आपका?
5: मैं मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ
4: जी।
5: ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
5: हिना मीना डीका कुमार सानू और साथी सैया के संग मड़ैया में।
4: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।
4: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: नाम क्या है मैम?
0: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं मैम।
1: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कसमें वादे प्यार मोहब्बत, वादे हैं वादों का क्या।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

जिस मजहब में जायज है ये वो मजहब।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून मैम, नाम क्या है आपका?
0: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से।
1: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी वाले इंतजार है मुझे तेरा।
1: ओके मैम, सुना रहे आपकी सुनाई पर ये गाना।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: लोकू कॉलोनी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये दिल वालों की बस्ती है, क्या अच्छा इलाका है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: निकिता
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: शम्मा शम्मा बाजे रे तेरे बैंड।
1: ओके मैम।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते, हमारा नाम भगवान है।
0: कहाँ से बात करो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुना तो?
1: जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन है?
0: आपकी फरमाइश परी।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: दुर्गापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बिजुरिया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नाम क्या है सर आपका?
1: सॉरी लेसन कर रहा हूँ भाई।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है मेरे हम सफर।
0: मेरे हम सफर
1: है मेरे हम सफर।
0: ये मेरे हम सफर। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार जी
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है आप आए दिन बाहर के और गाने की बोल है मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: आजाद खान पुरानी जमा।
1: बात कर रहे सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नीची हरी गुलाब की पत्थर पर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सूरज सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चांदनी रात में गोरी चलाएगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको, फरमाइश करेगा ना।

0: Whenever I ate ice cream, I would feel a sharp sensation in my teeth. My dentist told me that the upper layer of my teeth has worn off, causing sensitivity in my nerves. The dentist recommended me to use Sensodyne daily.
1: Sensodyne goes into the...
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन
3: हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज आस्था बंसल स्टडिंग 9th क्लास

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: डीएस साइंस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए।
2: नंबर वन, मेड इन चाइना राजकुमारी चुन ली। इंग्लिस्तान से राजकुमारी गुल गुरु ग्लोरिया। दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना भी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या, कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसो मत मेरी बात पे। चलो आपके लिए मैं चार अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: நன்றி நமஸ்காரம்
1: கங்காபூர் சிட்டிக்கு தர்கர்
2: अरे अरे अरे अरे भैया सांस तो ले लो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम गुनगुनाते कैसे? अच्छा आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। आँख में कैसी, बस बस बस बस बस इतना काफी। अब फैक्ट ये है भैया कि गुनगुनाना तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी दोनों उंगलियां लेके अपने नाक को बंद करोगे, चलो करो करो करो, दोनों उंगलियां पकड़ो, नाक को बंद करो, मुंह से सांस लेना बंद करो और उसके बाद गुनगुनाने की कोशिश करो तो गुनगुना नहीं पाओगे। लो मैं करके सुनाता हूँ। बस बस बस भैया सांस तो ले लो, फिलहाल गाने सुनो। प्ले करता हूँ मैं आपके लिए बैक टू बैक चार गाने।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: आपको स्पेसिफिक घर पर
1: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे तो हाँ सुनो ध्यान से पेश करता हूँ आपके खिदमत में अलविदा अलविदा कह ही देते जाते वक्त अलविदा कह ही देते जाते वक्त कब तक एतबार करते रहे हम और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा मत मनाओ गम भैया बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह कहाँ रेडियो डीएस 89.6 पे
0: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: रेडियो DS
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे रंग
3: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस कांगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।